के दिन नम दद को तक जन को गुप तक तो कुप तक तो तद दिन को तक जन को तद दिन कर तक तद दिन तंग तद दिन तंग तद दिन न तंग कर तक तद दिन न तंग तद जन तक दिन नम दद को तक जन को गुप तक तो कुप तक तो तद दिन को तक जन को तद दिन दान दान तक ते तक ते तक ते देके तक तक ते न दान दान तक ते तक ते तक ते देके तक तक ते के न तक ते दिम दिम तक ते तक ते दिम दिम तक ते तक ते दिम तक ते दिम तलांग चोम कर तक कर तोम तलांग चोम कर तक कर तोम तलांग चोम कर तक कर तोम तक ते तजम तक दिम ही तक ते तजम तक दिम ही तक ते तजम दिम तक तरी के तक तक ते तजम तरी तक तरी के तक तक हकु तजम तरी तक तक जम तरी तक ते तक जम तरी तजम तजम तक जम तरी तजम तजम तक के तजम तक दिमे तारी को धन को जनक गनक तुम को पंतरी कर कर कर तुम तिरकु ताक ताक तिरकु ताक तिरकु ताक तिरकु ताक ताक तिरकु ताक तिरकु ताक तिरकु ताक ताक तिरकु ताक तिरकु ताक तरी कर तुम तक दिन तक के तक जन तक के तक दिमे तक के दे तुम कर तक तरी कर तक तक दे तुम कर तक तरी कर तक तक दे तुम कर तक तरी कर तक तक दे तक तक दिन तरी कर तक तिरकु ताक ताक तिरकु ताक तिरकु ताक तरी कर तुम तक दिन तक के तक जन तक के तक दिमे तक के दे तुम तक दिन नम तदिको तक जनको कुप तक ट तद दिन को तक जनको तद दिन कर तक तद दिन तंग तद दिन तंग तद दिन तंग कर तक तद दिन न तंग तद जन तक दिन नम तदिको तक जनको कुप तक ट तद दिन को तक जनको तद दिन दान दान तक ट तक ट तक ट देके तक तक देके न दान दान तक ट तक ट तक ट देके तक तक देके न तक दिम दिम तक ट तक दिम दिम तक ट तक दिम तक दिम तलांग चोम कर तक तक तुम तलांग चोम कर तक तक तुम तलांग चोम कर तक तक तुम